मूर्ख मुगदा जन्म भया प्रणवत नानक तन की शरणा जन तू नाही विसरया। आसा महला पंजवा पही परापत मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन किए तेरी बरिया अवर काज तेरा कदना काम मिल।

जप तप संजम धर्म न कमाया, सेवा साधना जन हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। पातशाही दसवीं कव्यो वाज बेनती जा पई, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए जत की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो व्रत पारा। हमरे दोस्त सब तुम काव हो, आप हाथ दे मोह बचाव हो। सुखी बसै मोरो परिवार, सेवक सिख सब करदार। मोर अच्छा निज कर दे करे, सब बैरन को आज सिंगरे। पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम है शाड कोई अवर न त्याओ, जो बर चाहो सो तुम ते पाओ। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे भरे है, मरण काल का त्रास निवरे है। हु जो सदा हमारे पछा, सरिया तुझ जो करे हो रक्षा। राख ले

समझो हमारा। नमस्कार दसही को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी। शिव कन को शिव गुण सुख दियो, सतरन को बल मोहबद कियो। कड़ कड़ के अंतर की जानत, भले बुरे की वीर पछानत। चीटी ते कूंचर अस थूला, सब पर कृपा दृढ़ कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की भीर पछाने, कड़ कड़ के पट पट की जाने। जब उद करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब दे अपारा। जब या करख करत हो कम हो, तुम मैं मिलत दे दर सब हो। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी भूजो चारे।

केहे बिद सजा प्रथम संसार एकै रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कहीं भूपा अंडज झेरज सिद्ध जकीनी उत पुज खान बहुर रच दीनी कहूं भूल राजा वह बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा सगरी स

पूर्व लिखया पाया सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सोरठ महला पंजवा परमेश्वर दिता बन्ना दुख

परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा पन्ना आनंद करहे नर नारी हर हर प्रभु कृपा धारी संत सुख हो आ सब थाई पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर

काम, क्रोध, मोह, लोभ ते हंकार, ये पंज विषय विकार आम मनुख नूं मनुखता तो दूर लै जांदे ने ते मनुख दुखां दी दलदल विच धस जांदा है। इन्हां तो बचण लई शायर इंज अर्ज करदा है।

आस्था दीवार दी सतारवी पौड़ी जेदे साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने उस मूल नशे का जिक्र किया है जिस विच मनुख सच नू भुल जांदा है, प्रभु नू भुल जांदा है। एक नशा शराब अफीम भंग चरस सुल्फा गांजा इत्यादि, ये नशा किधरे चढ़ जाए तो मनुख अपना नाम भुल जांदा है, अपना बार दा घर भुल जांदा है। लेकिन जोबन दा नशा, धन दा नशा, प्रभुता दा नशा ऐसा नशा है जेदे च मनुख सच दा घर भुल जांदा है, प्रभु दा घर भुल जांदा है। उस मूल नशे दा साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जिक्र किया है और मनुख दियां कुछ बुनियादी कमजोरियां दा। मनुख दा सारा जीवन जिन्हां वस्तुओं की खातर दा ते लग जांदा है उहने ए तुरे पलाने पौन वे हर रंगी हरम सवारिया। पुराना जमाना असवारी का साधन सी घोड़े, और जिसके अस्तबल विच इराकी घोड़े बने हों, खूबसूरत और हवा नाल गल करन वाले, ऐसे घर भी समाजिक तल से बड़ी शोभा सी, बड़ी गल सी। महाराज जी ने घोड़े ऐसे होवन कि पवन दे समान चलन, और ऊपर सोने दियां काठियां पईयां होवन। सिर्फ इतना ही नहीं, हर रंगी हरम सवारिया, हर तरह के रंग दे नाल हरम नू सवारिया गया, घर नू सवारिया जाए, शिंगारिया जाए, जिस देश के ए रहना है। कोठे मंडप माड़ियां लाए बैठे कर पासारिया, बड़ा लंबा चौड़ा पसारा, कितना वड्डा पसारा, बड़े वड्डे वड्डे महल, कोठे, माड़ियां और होर बहु प्रकार दे लंबे पसारे, चीज करन मन भाव दे हर बुझन नाही हारिया। जो मन चाहता है उस चीज नू वर्तना है, खाना है, हंडाना है, की जो मन भाउंदा है। पर साहिब कहिंदे हर बुझन नाही हारिया। इस तरह के बंदे हरी नू बुझदे नहीं, हरी नू समझदे नहीं, हार जांदे ने जीवन दी बाजी। जीवन मिलिया सी जितन लई हार जांदे ने, जीवन गवा छड़दे ने, लेकिन देखन दे चाया है तृप्ति नसीब नहीं होंदी। तृप्त मनुख ही जीवन जेतु है, और तृष्णालु मनुख ही जीवन दी बाजी हार जांदा है। यही कारण है कि धर्म दा मूल गुण भी संतोख ही मन लिया गया है। विचारवान दार्शनिक लोग अधर्म दा मूल अवगुण बुनियाद दस दिन असंतुष्टि, ते धर्म दा मूल संतुष्ट संतोख। असंतुष्टियां तीन तरह दी होंदियां ने, दो दा संबंध संसार नाल है, ते दो दा संबंध परमार्थ नाल है। जिहड़ियां संसारिक असंतुष्टियां ने उहने ए, परिवारिक असंतुष्टि, व्यवहारिक असंतुष्टि, ते तीसरी जिहड़ी परमार्थिक असंतुष्टि है उहनूं कहिंदे ने व्यक्तिगत असंतुष्टि। बस होर कोई असंतुष्टि है ही नहीं। अगर कोई मनुख असंतुष्ट है तो परिवारिक तल ते असंतुष्ट होएगा, या व्यवहारिक तल ते असंतुष्ट होएगा, या फिर व्यक्तिगत अपने आप विच असंतुष्ट होएगा। परिवारिक असंतुष्टि ये व्यापक है, क्योंकि मनुख ये सोचता है
जैसे मेरे बच्चे होने चाहिए सन वैसे नहीं है, जैसे मेरे मां बाप होने चाहिए सन वैसे नहीं है, जैसे मेरी पत्नी होनी चाहिए सी या पति होना चाहिए सी वैसे नहीं है। इस तरह का मनुख जो परिवारक तल से असंतुष्ट है हर वक्त अपनी बेचैनिया च उलझिया रहेगा, हर वक्त परेशानी का बोझ उसके दिल दिमाग के उपर होगा क्योंकि असंतुष्ट है। और ये परिवारक असंतुष्टि कलेश का बायस बनती है, ग्रह कलेश ते घर का कलेश, घर का दुख कितना वड्डा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने संस्कृति श्लोक विच इसका जिक्र किया है, गिरंत गिर पतत पातालम जलंत दे दीप बैसांतरे बहंत अथा तोयं तोरंगं दुखंत ग्रह चिंता जन्मंत मरणं। कोई मनुख है बहुत उच्ची बुलंदियां तो गिर रहा हो, हिमालिया दी चोटी तो गिरंत गिर पतत पाताल खड़ विच गिर रहा हो, पाताल विच गिर रहा हो पहाड़ दी चोटी तो, जलंत दीप बैसांतरे ज्वालामुख दी अग दे विच जल रहा हो सड़ रहा हो, शोले बल दी अग उदे जल रहा हो, या फिर अथाह सागर दिया लहरां विच गोते खा रहे होवे डुब रहे होवे। इतना वड्डा ये जो कष्ट है दुख है, महाराज कहने दुखंत ग्रह चिंता जन्मंत मरणन, इन्हों सारे दुखों नालों भी घरेलू कलेश जड़ा है ये ज्यादा दुखदाई है, घर की जड़ी चिंता है ये ज्यादा दुखदाई है। क्यों? कि ये जन्म ते मरण का कारण बनती है, बार बार जमा दी मार का एक कारण बनती है। जबकि जल दे च मनुख डुब गया मर गया पांच दस मिनट का कष्ट, अग दे सड़ गया दस वी मिनट की तकलीफ, पहाड़ की बुलंद चोटी तो थले गिरे है हड्डियां चूर चूर हो गई ने तड़पे है अद्धा घंटा घंटा बस इन्नी तकलीफ। पर ग्रह कलेश जेड़ा है घरेलू कलेश घरेलू विपता झगड़े ये इतने वड्डे कलेश नू जन्म देंदे ने कष्ट नू जन्म देंदे ने कि मनुख बार बार जमदा है बार बार मरदा है और हर जन्म विच दुख भोगदा है और दुख विच मर जांदा है। दुख दी यात्रा बहुत लंबी हो जाती है उस मनुख की जो घरेलू कलेश विच जी रहे है। ते घरेलू कलेश विच कौन है जो असंतुष्ट है? इस तरह के मनुख नू कहिंदे ने परिवार तौर ते असंतुष्ट। सारी दुनिया विच ये असंतुष्टि व्यापक है, कोई अपनी मां तो असंतुष्ट, कोई अपने पिता तो, कोई अपने बच्चियां तो असंतुष्ट, कोई अपनी पत्नी तो, कोई अपने पति तो, कोई भरावां तो असंतुष्ट है, तो कोई मित्रां दोस्तां तो असंतुष्ट है। कहिंदा जैसे मेरे दोस्त होने चाहिए सन वैसे नहीं ने, जैसा मेरा घरा होना चाहिए सी वैसा नहीं है, जैसिया मेरिया भैणा होनिया चाहिए सन वैसिया नहीं ने, और जैसी मैनू पत्नी चाहिए सी वैसे नहीं है, जैसा पति होना चाहिए सी वैसा नहीं है। इसनू कहने ने परिवारक असंतुष्टि। जो परिवारक तल ते असंतुष्ट है अपनिया असंतुष्टि

व्यवहारिक असंतुष्टि। पारिवारिक असंतुष्टि, व्यवहारिक असंतुष्टि, ये दो असंतुष्टियां इतनिया प्रबल ने कि ऐसा असंतुष्ट मनुख हर वक्त उलझन दे चोगेगा, हर वक्त कल्पनावां दा ताना पेटा बुनदा रहेगा, हर वक्त तनाव अपने सिर पे रखेगा और अपना जीवन गवाई जाएगा गवाई जाएगा। ये दो असंतुष्टियां व्यापक तौर पर संसार विच मौजूद ने और इन्हां दो असंतुष्टियां दा नां है परिवारिक असंतुष्टि, व्यवहारिक असंतुष्टि। एक तीसरी असंतुष्टि है जिसनु कहंदे ने व्यक्तिगत असंतुष्टि। ये परमार्थिक है, ये धार्मिक है। व्यक्तिगत असंतुष्टि, जो व्यक्तिगत तल ते असंतुष्ट है, इस तरह के बंदे नु भगत कहंदे ने, साधक कहंदे ने, ये परिवारक तल ते संतुष्ट है। कहंदा जैसा मेरा परिवार है ठीक है, जैसे माँ बाप ने ठीक ने, जैसे बहन ते भरा ने बिल्कुल ठीक ने, जैसी पत्नी है जैसा पति है ये तो ठीक ने, और जैसी मेरी प्रारब्ध है ये भी ठीक है, पर जैसा मैं हाँ मैं ठीक नहीं। ये अपने आप दे असंतुष्ट होंदा है, कहिंदा हे प्रभु बाकी ते सब कुछ ठीक है, मेरा परिवार ठीक, मेरी उपजीविका भी ठीक, प्रारब्ध भी ठीक, पर की करा हे प्रभु मैं ठीक नहीं। तो ये तीन तरह दिया असंतुष्टियां ने, परिवारिक असंतुष्टि, व्यवहारिक असंतुष्टि, व्यक्तिगत असंतुष्टि। अक्सर देखा गया है कि दो ही असंतुष्टियां दे सारा संसार घूम रहा है, परिवारिक असंतुष्टि और व्यवहारिक असंतुष्टि। घर घर दे कलेश है परिवारिक असंतुष्टि करके, और कलेश तो पैदा हुई पीड़ा जन्म ते मरण का कारण बनती है। ते कलेश पैदा होंदा इत्थों, पुत्र मां बाप तो संतुष्ट नहीं और मां बाप बच्चियां तो संतुष्ट नहीं, पति पत्नी तो संतुष्ट नहीं और पत्नी पति ते संतुष्ट नहीं। सारी दुनिया दियां अदालतां तलाक दे मुकदमियां नाल भरियां पईयां ने। कारण किधरे पति संतुष्ट नहीं है, किधरे पत्नी संतुष्ट नहीं है, ते असंतुष्टि कलेश नु जन्म देंदी है। सारी दुनिया दियां अदालतां दे भरावां दे मुकदमे, भाई भाई दे मुकदमे, एक भरा दूसरे भरा ते संतुष्ट नहीं है। इसनु कहिंदे ने परिवारक असंतुष्टि, और इहदे नाल परिवार नरक बन जांदा है। इस तरह दे बंदे नु किसी होर दोजक दे जान दी लोड़ नहीं, उसका परिवार ही दोजक है जो परिवारक तल ते असंतुष्ट है। व्यवहारक असंतुष्टि, ऐसे मनुख दा धंधा ही नरक है, क्योंकि अपने धंधे विच अपने व्यवहार विच संतुष्ट नहीं, अपनी प्रालभत ते संतुष्ट नहीं, अपनी उपजीविका ते संतुष्ट नहीं। तो ऐसा मनुख धंधा करदे होया कम करदे होया किसी हद तक नरक ही भोगेगा, क्योंकि संतुष्ट नहीं है। लेकिन एक तीसरी असंतुष्टि जो धर्म नु जन्म देंदी है, सच नु जन्म देंदी है, प्रभु दे नेड़े ले आउंदी है, व्यक्तिगत असंतुष्टि। हे प्रभु बाकी ते सब कुछ ठीक है, जैसा मेरा परिवार है ठीक है, जैसी मेरी प्रारब्ध है ठीक है, पर जैसा मैं हाँ मैं ठीक नहीं। बाबा फरीद कहंदे ने मुझ अवगुण सह नाही दोष, हे प्रभु तेरे ते कोई दोष नहीं, ये तेरी कृपा तेरी बख्शिश दा मैं अजे तक पात्र नहीं बन सकया, तेरे तो अजे तक मैनू जे आनंद दी प्राप्ति नहीं हो सकी, तो कमी मेरे विच है, दोष मेरे विच है, मुझ अवगुण सह नाही दोष। ये जिहड़ी व्यक्तिगत असंतुष्टि है, इस विच मनुख इस ढंग दी साधना करदा है कि अपने आप नू महान बनांदा है, पात्र बनांदा है, ते जिस दिन पात्रता बन जांदी है उस दिन परम आनंद दी प्राप्ति हो जांदी है।

0: है जो व्यवहारिक ते परिवारिक असंतुष्टि फसे हुए है वो बहुत कुछ भी बना लवे ते बहुत कुछ भी प्राप्त कर लवे। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज कहने ने कि जिंदगी दी बाजी हार जाएगा, भावे बहुत कुछ प्राप्त कर लवे कि ना कुछ प्राप्त कर लवे। महाराज कहने ने तुरे पलाने पौन वे हर रंगी हरम सवार। घर विच घोड़े ऐसे होवन, असवारी दे साधन ऐसे होवन कि हवा नाल गल करन, और घोड़ियां दे उपर काठियां पईयां होवन सोने दियां। हर तरह दे रस ते रंग दे नाल हरमां नूं सवार लिया जाए। मनुख अपने हरम विच मन भावदे पदार्थां नूं रख लवे ते पवन नाल गल्लां करदे होए घोड़े फिर उचियां उचियां माड़ियां कोठे ते मंडप, कोठे मंडप माड़ियां लाए बैठे कर पा सारे बहुत लंबा पसारा। बड़ियां बड़ियां हवेलियां, बड़ियां बड़ियां उचियां इमारतां। दरअसल जमीन देते जद मकान उच्चा उठता है इदिच मनुख अपनी उच्चाई समझ लैंदा है, मैं उच्चा उठ गया। यही कारण है कि मकान नूं उच्चा उठाना चाहता है। हुण मकान ही उच्चा नहीं उठया, मैं भी उच्चा उठ गया। ये मेरा झंडा ही उच्चा नहीं होया, मेरा धर्म उच्चा हो गया, मेरा व्यक्तिगत जीवन उच्चा हो गया, मेरा समाज तल उच्चा हो गया, मेरा देश उच्चा हो गया। इस वास्ते कहंदे ने कि माड़ी कोठा नीवा नहीं चाहिदा, उच्चा चाहिदा झंडा, उच्चा चाहिदा बुलंद चाहिदा। बुलंद झंडा बुलंदी दी निशानी जो है बन जांदा है। तो साहिब कहंदे ने ये उच्चियां उच्चियां माड़ियां किसी हद तक हर व्यक्ति दे अपने अपने झंडे ने। जिसने जमीन दते गाड़े हुए ने जगत नूं दसण लई कि ये मेरा झंडा है और इतना उच्चा है, इतना बुलंद है। महाराज कहंदे ने अगर इस तरह दा भी किसी ने पसारा कीता होवे, बड़े वड्डे वड्डे महल कोठे मंडप ते माड़ियां, ते उन्हां विच हर तरह दा हार शिंगार मौजूद होवे, हर तरह दा रस मौजूद होवे, ते असवारियां लई घोड़े बूए ते बन्ने पए होवन, अस्तबल विच मौजूद होवन जो हवा नाल गल करदे होवन। फिर सतगुरु कहिंदे ने चीज करन मन भावदे, जो मन चाहे खाण नूं, जो मन चाहे पहनण नूं, जो मन चाहे देखण नूं, हर तरह दा साजो समान वो मुहैया कर लवे, प्राप्त कर लवे। इधर मन विच इच्छा पैदा हुई, इधर उसकी पूर्ति हो गई। मनुख दे प्राणा विच इसकी बड़ी प्रबल प्यास है कि मेरी इच्छा तत्क्षण पूरी होनी चाहिए, उस विच देर नहीं लगनी चाहिए। एक कल्पना दी गौ भी मनुख ने बनाई है जिन्हों कहिंदे ने काम धेन गौ, जो तत्क्षण कामना की पूर्ति कर देंदी है। इधर कामना करो इधर पूरी हो गई। इस तरह कल्पना का एक वृक्ष भी बनाया है जिन्हों कहिंदे ने कल्प वृक्ष, इधर कल्पना करो तो इधर इस दरख्त ने सारिया कल्पनावां की पूर्ति कर दी, सारी इच्छावां की पूर्ति कर दी। तो मैं इस तरह समूह ब्रह्मंड विच कोई ऐसा वृक्ष नहीं है जिदे थले बैठो कल्पना करो ते तत्क्षण पूरी हो जाए। गौआं ते ने पर कामधेन गौ कल्पना दी गौ है। वृक्ष ते बथेरे ने पर कल्प वृक्ष वाकई कल्पना दा ही वृक्ष है, क्योंकि मनुख की कल्पना दे अंदर बार बार ये दौर चलदा है कि कुछ ऐसा होवे कि मैं इच्छा करा ते तत्क्षण पूरी हो जाए। कोई ऐसा पहाड़, कोई ऐसा देवता, कोई ऐसा संत, कोई ऐसी गौ, कोई ऐसा वृक्ष, कोई ऐसा ग्रह, कोई ऐसा नक्षत्र होवे कि जिसके सामने वे देखा और इच्छा करा तत्क्षण पूरी हो जाए। तत्क्षण इच्छा कोई भी नहीं पूरी होंगी, वक्त लगता है, समा लगता है, और उसके लिए सबर चाहिदा है। शायद इस वास्ते बाबे फरीद ने कहा है कि सबर ए सुआव जे तू बंदा दृढ़ करे, वध थी वे दरियाओ टुट न थी वे वाह। साबर बंदे सागर की तरह हो जाते ने, छोटे छोटे नदी नालियां की तरह नहीं, उते महान हो जाते ने। पर साहिब कहिंदे चलो ऐसा भी हो जाए कि मन विच जिहड़ी इच्छा पैदा होवे और जबान नाल उसकी फौरन फरमाइश होवे ते पूर्ति भी हो जाए, उसे वक्त उस इच्छा की पूर्ति भी हो जाए। चीज करन मन भाव दे हर बुझन नाही हारिया। अगर इस तरह का कोई फसे होया मनुख है महल माड़ियां दे तरह तरह के हरमां दे, महाराज कहिंदे उसनू हरी की सूझ नहीं आती, हरी की समझ नहीं आती, तो इहदे नाल की होंदा है वह अपना जीवन हार जांदा है। एक जुआरी धन हारदा है, कोई संपदा हारदा है, कोई अपने कपड़े हारदा है, कोई गहने हार देंदा है। इतिहास विच ऐसा भी जिक्र है कि कोई अपनी स्त्री हार देंदा सी जुए विच, पर इह ते बहुत बड़ा बदकिस्मत है, इह ते अपने आप नू हार के चले है। भगत कबीर कहिंदे ने चले जुआरी दोए हथ झार, इह दोवे हथ झाड़ के जुआरी जा रहे है। ये चार कंधियां ते कौन जा रहे है, ये मरगढ़ घाट की तरफ कौन जा रहे है, ये ओ जुआरी जो जीवन हार गया है, जिंदगी हार गया है। जेतु ते ओ है कि जिन्हों परम जिंदगी मिल जाए जिद मौत ना हो, पर ये हार के जा रहे है, इनू परम जिंदगी नहीं मिली, इनू परम जीवन नहीं मिलिया, ये हार के जा रहे है। चले जुआरी दोए हथ झार, तो साहब कहिंदे ने चीज करन मन भाव दे हर बुझन नाही हारिया। कर फरमाइश खाया वेख महलत मरण वे सारिया। महलत महलात नू वेख के अपना लंबा चौड़ा पसारा वेख के ते तरह तरह की फरमाइश की पूर्ति वेख के मौत भुल गई। जन्म चेते रहा, जीवन चेते रहा, मरण भुल गया। धर्म का जन्म मौत दे चिंतन तो है, काल दे चिंतन तो ही अकाल का जन्म है। जब कोई काल का चिंतन करता है, मौत का चिंतन करता है, तो ऐसा होता है कि उसनों वो जीवन प्राप्त हो जाता है जिद मौत नहीं। आखिर ऐसी की खूबी है मौत दे चिंतन दे, क्योंकि जिसनों अपनी मौत चेते है वो किसी नाल छल नहीं कर सकेगा, कपट नहीं कर सकेगा, किसी से जबर नहीं कर सकेगा, किसी नाल धोखा नहीं कर सकेगा, किसी नाल झूठ नहीं बोल सकेगा और किसी का कुछ हथिया नहीं सकेगा। अगर हथियाया इसने और इस देश उसनू पूर्ण तौर पर सफलता मिली है, तो समझ लेना इसनू मौत चेते नहीं, जीवन चेते है, जन्म चेते है। ऐसे मनुख की दृष्टि अपने आप विच नहीं आती जो असंतुष्ट है, उसकी दृष्टि प्राय घर विच आती है। और यही आचरण तो गिरी हुई गल गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने मान ली है कि लोभाद दृष्ट पर ग्रहण जद विद आचरण। अगर दृष्टि प्राय तंत वह टिक गई है तो दृष्टि दुराचारी हो गई, अगर दृष्टि प्राय धन ते टिक गई तो दृष्टि ते चोर हो गई। जिसकी दृष्ट चोर हो गई, जिसकी दृष्ट यार हो गई, उन्हों हथां पैरां नाल भी चोरी करदिया देर नहीं लगेगी। उदे हथ पैर जिसम भी दुराचारी होंदिया कोई देर नहीं लाएगा, क्योंकि दृष्टि ते दुराचारी हो गई। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने महान है ओ मनुख के दृष्ट बिकारी बंधन बांधे हौता के बल जानी। जो अपनी दृष्टि नु बंधन पावे, प्राय तन ते ना टिके, प्राय धन ते ना टिके, पर अंदर असंतुष्टि है, तो ऐसे मनुख की दृष्टि प्राय धन ते ही टिकेगी, अपने धन ते टिक नहीं सकती, क्योंकि अपने धन दे संतुष्ट नहीं है, तो दृष्टि चली गई है प्राय धन ते। अपने परिवार अपनी पत्नी ए विच ए संतुष्ट नहीं है, तो दृष्टि चली गई है पर नारी ते, तो दृष्टि ते दुराचारी हो गई, दृष्टि ते चोर हो गई। चारों पासे चोर दृष्टियां ही घूम रही ने, दुराचारी दृष्टियां ही घूम रही ने, जगत का वातावरण बहुत मैला क्योंकि हाथ पैरों की इतनी लंबी पहुंच नहीं जितनी दृष्टि की पहुंच है। अखां बहुत दूर तक वेखदियां ने, हाथ इतनी दूर तक नहीं जा सकते, पैर इतनी छेती इतनी दूर तक नहीं जा सकते जितनी दूर तक और जितनी जल्दी दृष्टि चली जाती है। पर दृष्टि दुराचारी होवे, दृष्टि चोर होवे, क्योंकि जिस दे अंदर असंतुष्टि है उसकी दृष्टि बार बार दूसरों के तन पे टिकेगी। जिस दे अंदर असंतुष्टि है उसकी दृष्टि बार बार दूजियां दे धन ते टिकेगी, और जे दूजियां दे धन ते टिकी है तो दूजे दा धन खतरे विच है, दूजे दे तन ते टिकी है तो दूजे दी असमत खतरे विच है। असंतुष्ट मनुखां करके संसार विच किसी दी असमत खतरे विच है, किसी दी धन संपदा खतरे विच है। इस वास्ते धर्म दा मूल गुण है संतुष्ट होना। साहिब कहंदे ने महलात नूं वेख के मरना भोली गया और दृष्टि चारों पासे संसार विच भटक रही है। एक दिन ऐसा होया कि जर आई बुढ़ेपा आ गया, वृद्धावस्था आ गई, जोबन हारिया। जर आई जोबन हारिया, जर बुढ़ेपा आया है, इन्हें जवानी नूं हरा दिता है। अक्सर असी ऐसा सुनते हैं तो देखते हैं कि जवानी बुढ़ेपे नूं हरा देंदी है। अगर एक बुढ़ा एक जवान तो लड़न तो स्पष्ट है जवान जीत जाएगा, बुढ़ा हार जाएगा। एक बुढ़ा होवे एक जवान होवे जवानी जीतेगी। एक बुढ़ा दौड़ लावे एक जवान दौड़े, बुढ़ा रह जाएगा पीछे, जवान अगे निकल जाएगा। पर साहिब कहंदे ने बुढ़ेपा वास्तविक अपने आप विच इतना प्रबल है, जद किसे ते आउंदा है जवानी हार जांदी है, जोबन हार जांदा है, जोबन दे उपर ही टुट पैंदा है बुढ़ेपा। व्यक्तिगत तल ते जद बुढ़ेपा आउंदा है, जर अवस्था आउंदी है, जवानी रुखसत हो जांदी है, जवानी नूं मिटा के रख देंदा है। इस वास्ते देखण दे चाहे कि जीवदियां जीवी मनुख दो दफा मरदा है। किसी जवान नूं पुछिए तेरा बचपना किथे गया, कहिंदा मर गया। किसी बुढ़े नूं पुछिए तेरी जवानी किथे गई, कहिंदा मर गई। ते जवानी नूं किसने मारिया, बुढ़ेपे ने। बचपने नूं मारिया जवानी ने, ठीक है जवानी बलवान है बचपने नूं मार गई, पर एक पासे बुढ़ेपा इतना बलवान है जवानी नूं मार गया। साहिब कहिंदे जर आई जोबन हारिया, इधर बुढ़ेपा आया इधर जवानी हार गई, ते जैसे जवानी हार गई ते हरम बेमजा हो गए, ये महल माड़ियां बेरसियां हो गईं, ये रूप रंग सब बेरसे हो गए, सब फिक्के पै गए। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने कि तू वास्तविक व्यक्तिगत असंतुष्टि नूं पैदा कर, ताकि तू अपने अंदरों परमात्मा नूं प्रगट कर सकें ते परमात्मा नूं प्राप्त कर सकें।
1: Thank you for listening to CISK Sikh Radio 94.3 FM, broadcasting from the Western Singh Sabha Gurdwara in Williams Lake, British Columbia, Canada. You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singhsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God.
2: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਰੇਡੀਓ 94.3 FM। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 250-392-3874। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 250-392-3874। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ singhsabha2@gmail.com singhsabha2@gmail.com। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
3: ਗੁਟਕਾ ਸੰਤੋਖ ਕੇ ਬਾਜਾ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰਤਾ, ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਸਵੈਯਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅੱਜ ਖੇ ਕੌਣ ਸਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਾਨ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉੱਥੇ ਜਥਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਦੌੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੰਘਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੰਗਤ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਿੰਤਿਆ ਖੰਘਦਾ ਕਾਹਨੂੰ ਖੰਘਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਹੜਦਾ ਨੀ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੰਘ ਕਾਹਤੇ ਹੋਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਗਏ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸੂਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕਾਹਤੇ ਸ਼ਾਹੀਦੇ ਕਿਤੇ ਐ ਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਸਾਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਨੀਨ ਕਨੀਨ ਚੰਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉੱਪਰ ਖੰਡ ਲਾ ਦਈਏ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਟਡ ਕਰੀ ਦੀ ਖਲੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਕੁਨੀਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ ਕੁਨੀਨ ਤਾਂ ਉਨੀ ਕੌੜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਲੰਘਾਉਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪਰ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਟਡ ਕਰ ਦੋ ਫਿਰ ਨਿਆਣਾ ਵੀ ਕੁਨੀਨ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਹਾਰੇ ਤੇ ਗੋਰਖ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿਤੇ ਮੁੜ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਤੁਹੀਨ ਹੋ ਜੂਗੀ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤ ਵਿਚ ਲਿਆਓ ਕਿਉਂ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਲੇਵੇ ਬਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਲ ਸਨ ਤੇ ਭੰਗਰਨਾਥ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬਣੂਗਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਰੇ ਪੰਥ ਕਰੇ ਉਜਾਲਾ ਐਸਾ ਵਿਦਵਾਨ ਐਸਾ ਗੁਣੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਊਗਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਮਿਲੂਗਾ ਕੀ ਤੇਰੇ ਮਤ ਵਿਚ ਆਵਾਂ ਲੱਭੂਗਾ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਲਚ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਲਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵਾਂ ਖੋਲ ਸਤਨਾਮ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਲਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਲਿਆਓ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਊਗਾ ਵੀ ਉਮਰ ਦਰਾਜ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਜੀਵਿਆ ਲੋੜ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਤਾ ਜੇ ਤੂੰ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵੇ ਜੋਗੀ ਜਿਉ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਮਿਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੋਭਾ ਹੋਊ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਬੰਨੀ ਫਿਰਨਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਦ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਟੀ ਆਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟੋਲੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੂ ਲੈ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਆ ਸਵੱਈਏ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉੱਤਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਨਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜੋ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰਖਾ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰ ਜਾ ਜੇ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਚਾਰ ਯੁੱਗ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਗੱਭੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾਂ ਤੇ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ ਚਾਰ ਜਰਬ ਦਸ ਦਸੂਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਸ ਗੁਣੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 40 ਯੁੱਗ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦੇਖੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਯੁੱਗ ਚਾਰੇ ਆਰ ਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ ਹੈ ਗੋਰਖਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਜਾਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੌਗਰਫੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ 9 ਖੰਡ ਨੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਰਤਾਵਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਏ ਇਹਦੇ 2 ਅਰਥ ਨੇ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਖੜੇ ਹੋਣ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਏ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ ਆਖੋ ਸਤਨਾ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵੀ ਜਾਣੀਏ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਏ ਚੰਗਾ ਲਾਹੌਰ ਖਾਏ ਕਹਿ ਜਸ ਕੀਰਤ ਚੰਗਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ जास्ते कीरत पढ़े लिखे बैठे हो नितनेम दी बाणी है तुहाडी जास्ते कीरत दोहां दा अर्थ है वड्याई शोभा पर फर्क बहुत है जस ओ हुंदा है जो तेरे पिठ पिछे शोभा होवे कीर्ति ओ वड्याई हुंदी है जो तेरे मुंह ते हुंदी है मुंह ते तां बहुत हुंदी है साडी पर हुंदी ओ है शोभा जिहड़ी तेरे पिछों भी होवे ओ शोभा अगे जाऊगी अगे करनी कीर्त वाची है इतों की शोभा जिहड़ी तेरे बाद विच होनी है वो वाची जानी है उत्थे गुरमुख प्यारे गुरु नानक कहिंदे नौं खंडां विच मेरे सामने भी मैनू चंगा कहण मेरे पिछों भी लोग मेरी शोभा करनो जोगिया जे मैं चाली जुग भी जिउंदा रहा जे सारी धरती भी मैनू पूजण लग गई ना तुरे फिरन हथ बन्नी फिरन चंगा ही चंगा कहण पर जोगिया याद रखी जे मैं वाहिगुरु की नजर विच ना आया एक कौडी का भी नहीं बनूंगा आखो सतनाम जे तिस नजर ना आवई ता बात ना पूछे लै जो बाबे नानक का हुक्म ले जो दसम पातशाह की बाणी एक अकाल पुरख वाहिगुरु की कृपा तो बिना ओदी नजर विच आए तो बिना सच्चे दरगाह दे विच एक कौडी भी कीमत नहीं पैनी इत्थे बनाओ कीमत बनाउणी है पर दोहां दा टकराव कर लिओ पैण लगे सोच लिओ जे जग विच ऊंचे होणा बड़े कहाउणा है तां ऊंचा उठना पऊगा धन इकट्ठा करना पऊ पदवी लैणी पऊ ज्यों ज्यों तू वड्डा बणेगा संसार दी निगाह विच आवेगा पर ज्यो ज्यो तू छोटा बनेगा निरंकार की निगाह विच आवेगा फार्मूला ही इन्हें ज्यो ज्यो अपने आप नू वड्डा कहावेगा जग देखूगा ज्यो ज्यो तू अपने आप नू छोटा कहावेगा ना तेनू रब देखना शुरू कर दूगा उत्थे कौन वड्डा है आपस को जो जाने नीचा सो घनिए सब ते ओ पी चंदा ओ भाई तारा जो सब कुछ करो पर सूरबीर बनो हाथी घोड़े रखो दान संयम करो पर अकाल पुरख वाहिगुरु की कृपा तो बिना एक रत्ती भी कीमत नहीं पैनी दरगाह दे विच ए दो सवैया दी विचार बस अखरी अर्था दी ओ विचार करी दिए क्योंकि समा फिर लम्मा हो जांदा है मैनू खुद महसूस है कि तुसी अमृत वेले कम्मां ते जाने ते इत्थे पाबंदी भी बहुत है टाइम दी उत्थे पंजाब विच ते चार दिन ना भी जाओ तां भी हाजरी लग जांदी है इत्थे चार मिनट ना जाओ हाजरी ओ खत्म अज खे खुश आ रजिस्टर विचों ही छुट्टी बन जांदी है सो फिर भी जो हुक्म है सानू गुरमुख प्यारे ओ कहिहड़ा है अबुर काज तेरे किते न काम मिल साध संगत पाज केवल ना ये जरूरी तू तो कह दने मेरे वर्गे कि साध संगत जी थोड़ा बड़ा धन्यवाद तुसी जरूरी काम छड के आए कहने ना इतों तुसी कीमती टाइम छड के आए उन्हें पूछया करो भी जरूरी टाइम जरूरी काम छड के आए हैं कि जरूरी काम करना है वो कहते जरूरी काम तो घरे तो इतने तकड़ा लेने आए हैं को सकना देखो अनाउंसमेंट आऊगी कहते तुम कीमती टाइम छड के आए हो और प्रेमियों तुम कीमती टाइम छड के नहीं आए कीमती टाइम इतने बनाउन आए उम्र विच लेखे दे जिहड़ी याद साईं दी गुजरे पैंदी मुझे बहुत बहुत धन्यवाद है तुहाडा संगतां दा बड़े प्यार सत्कार दे नाल बेनतियां सुनदे हो बड़ा मान सत्कार बख्शदे हो टुटे फुटे बचन बेनतियां तुसी स्वीकार करदे हो सतगुर इसे तरह प्रेम सत्कार बना के रखण ते रहिंदी बाणी दी विचार आपां प्यार सत्कार दे नाल सरवण करिए इक जरूरी बेनती भाई ओह भी सुण लिओ जिहदे खातर मैं अमरीका गेड़े मारदा है वो है कॉलेज की सेवा तुहानू पहला भी कही सी प्रधान साहब जी ने ਹੁਣ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੇ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਨੀਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਲੱਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ।

0: धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, धन गुरु दियां संगतां, आप जी दे चरणां विच सेवा करदे आं, बेअंत भुल्लां हो जांदियां हन, आप सदा बख्शंद हो। अगों लई शुद्ध सेवा करन दा बल बख्शना। सतगुर पातशाह जी दाराईयां संगतां वलों आप जी दी बाणी दा सत्कार सेवा वास्ते बेअंत माया हाजिर होई है।
1: एक ओंकार, सारी संगत मूल मंत्र दा जाप करया करो भाई। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर परसा जाप

आओ सारी संगत अनंत साहब जी की बाणी विच कोई रसना खाली ना रवे, पवित्र करिया करो रसना। राम कली महला तीजा, आनंद को ओंकार सतगुर प्रसाद।

श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन श्री गुरु।

我叫不了你啊，我是他。सब लग नाम से आए सब लग नाम से आए सब लग नाम से आए सब लग नाम से आए जी सब लग नाम से आए सब लग नाम से आए सब लग नाम से आए जब लग जो

मन हर हर प्रीत लगाए, मन हर हर प्रीत लगाए, मन हर हर प्रीत लगाए, मन हर हर मन हर हर प्रीत लगाए, मन हर हर प्रीत लगाए, मन हर हर प्रीत लगाए, मन हर हर मन हर हर प्रीत लगाए, मन हर हर प्रीत लगाए, मन हर हर प्रीत लगाए, मन मन हर हर प्रीत लगाए, मन हर हर प्रीत लगाए, मन हर हर प्रीत लगाए, मन हर हर प्रीत लगाए, मन हर हर प्रीत लगाए, मन हर हर प्रीत मन हर हर प्रीत लगाए, मन हर हर प्रीत लगाए, मन हर हर प्रीत लगाए।

0: से गुर सिख धन धन है,
1: गुर सिख धन धन है, गुर सिख धन धन है,
0: गुर सिख धन धन है।

जिन गोर अपने सुनिया हर कनी ते गुर सिख धन धन है जिन गुर सिखा को हर संतुष्ट है।

सतगुरु की गल मनी तेरी सतगुरु की गल मनी तेरी सतगुरु की गल मनी तेरी सतगुरु की गल मनी जो गुरमुख नाम से आए दे जो गुरमुख नाम से आए दे जो गुरमुख नाम

0: हे गुर सिख धन धन है,
1: हे गुर सिख
0: धन धन है,
1: गुर सिख धन धन है,
0: गुर सिख धन धन है,
1: गुर सिख धन धन है,
0: गुर सिख धन धन है,
1: गुर सिख धन धन है।

हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिखकाई। माया मोह परम पै फूले, सुतधारा स्यों प्रीत लगाई। इक उत्तम पंथ सुने गुर संगत, तेहि मिलांत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनस सहज सुपाय। दर्शन परसें गुरु कै, जन्म मरण दुख जाई।

निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन मार्ग ठाक न पाए, मन पातशाह प्रगट जाए, मन मग्न चले पंथ, मन धर्म से दिशन बंद, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन पावे मोख द्वार, मन परवर ऐसा दार, मन तर तारी गुरु सिख, मन नानक पवहे न पिख, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे पावे दरगह मान, पंचे सोहे दर राजान, पंचा का गुर एक ध्यान, जे को कह करे विचारु, करते कह करण नाही सुमारु, तौल धर्म का पूत, संतोख साब रखिया जन सोत, जे को बुझै होवे सचियारु, तबले उपर केता पारु, धरती होर परै होर होर, दिसदे पार तलै कवण जोर, जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया बुढ़ी कलाम, एह लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखिया केता होए, केता ताण सवाल रूप, केती दात जाने कौन कूत, किता पसाऊ एको कवाऊ, दिसते हो ए लख दरियाऊ,

ਨਰਿੰਦਰ ਕੇਤੀਆਂ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਜਿਥੈ ਨਾਲ ਵਿਨੋਦ ਗੂੜ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਜਿਥੈ ਕਾੜਤ ਕੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ ਤਾਂ ਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੇ ਪਛਤਾਏ ਜਿਥੈ ਘੜੀ ਹੈ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਜਿਥੈ ਘੜੀ ਹੈ ਸੁਰਸ ਦਾਂ ਕੀ ਸੁਧ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਜਿਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰ ਤਿਨ ਮਹਿਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਜਿਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨ ਠਾਗੇ ਜਾਹੀ ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਏ ਜਿਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋਕ ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਤਿਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਪੰਡ ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ ਤਿਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਜਵਕਾਰ ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਜਤ ਬਹਾਰਾ ਧੀਰ ਜਸੁਨ ਆਰ ਅਹਿਰਣ ਮਤਵੀਦ ਹਥਿਆਰ ਪਾਉ ਖਲਾ ਗੰਡਪ ਦਾਉ ਪਾਂਡਾ ਪਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿਤ ਢਾਲ ਘੜੀ ਐ ਸਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਦਿਨਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਸੁਣੋ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਦਰਦ ਮਾਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਸ਼ਪਾ ਸ਼ੰਦ ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਕਰ ਜਿਹ ਨਿਰਵਰਨ ਜਾ ਤਿਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਪੇਖ ਕਉ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਿਹੇ ਚਲ ਮੂਰਤਨ ਪਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਤੋ ਕਹੇ ਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ ਸਾਹ ਸਾਣ ਗਣੇ ਜੈ ਤਿਰ ਪਵਣ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਾਰਿਆ ਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਣ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿ ਤੂ ਤਬ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਣ ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਣਤ ਸਮਤ ਬਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਸ਼ੰਗ ਨਮਾਸਤਵੰਗਾ ਕਾਲੇ ਨਮਾਸਤਵੰਗਰ ਬਾਲੇ ਨਮਾਸਤੰਗਾ ਰੂਪੇ ਨਮਾਸਤੰਗਾ ਨੂਪੇ ਨਮਾਸਤੰਗਾ ਬੇਖੇ ਨਮਾਸਤੰਗਾ ਲੇਖੇ ਨਮਾਸਤੰਗਾ ਗਾਏ ਨਮਾਸਤੰਗਾ ਜਾਈ ਨਮਾਸਤੰਗਾ ਗੰਜੇ ਨਮਾਸਤੰਗਾ ਪੰਜੇ ਨਮਾਸਤੰਗਾ ਨਾਮੇ ਨਮਾਸਤੰਗਾ ਠਾਮੇ ਨਮਾਸਤੰਗਾ ਕਰਮੰਗ ਨਮਾਸਤੰਗਾ ਧਰਮੰਗ ਨਮਾਸਤੰਗਾ ਨਾਮ ਨਮਾਸਤੰਗਾ ਧਾਮੰਗ ਨਮਾਸਤੰਗਾ ਜੀਤੇ ਨਮਾਸਤੰਗਾ ਪੀਤੇ ਨਮਾਸਤੰਗਾ ਬਾਹੀ ਨਮਾਸਤੰਗਾ ਟਾਹੀ ਨਮਾਸਤੰਗਾ ਨੀਲੇ ਨਮਾਸਤੰਗਾ ਨਾਦੇ ਨਮਾਸਤੰਗਾ ਛੇਦੇ ਨਮਾਸਤੰਗਾ ਗਾਦੇ ਨਮਾਸਤੰਗਾ ਗੰਜੇ ਨਮਾਸਤੰਗਾ ਪੰਜੇ ਨਮਾਸਤੰਗਾ ਉਧਾਰੇ ਨਮਾਸਤੰਗਾ ਬਾਰੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਸੁਏਕੈ ਨਮਾਸਤੰਗਾ ਨੇਕੈ ਨਮਾਸਤੰਗਾ ਭੂਤੇ ਨਮਾਸਤੰਗਾ ਚੁਪੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਨਿਰਕਰਮੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਨਿਰਭਰਮੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਨਿਰਦੇਸੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਨਿਰਭੇਸੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਨਿਰਨਾਮੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਨਿਰਕਾਮੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਨਿਰਦਾਤੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਨਿਰਕਾਤੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਨਿਰਦੂਤੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਅਭੂਤੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਅਲੋਕੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਅਸੋਕੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਪੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਅਥਾਪੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਧਰਮਾਨੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਅਗਾਹੀ ਨਮਾਸਤੰਗ ਅਬਾਹੀ ਨਮਾਸਤੰਗ ਗਰਵਰਗੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਅਸਰਗੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਪਰਭੋਗੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਸੁਯੋਗੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਰੰਗੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਪੰਗੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਅਗੰਮੇ ਨਮਾਸਤਾਸ ਰੰਮੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਜਲਾਸਰੀ ਨਮਾਸਤੰਗ ਨਿਰਾਸਰੀ ਨਮਾਸਤੰਗ ਅਜਾਤੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਪਾਤੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਮਾਜਵੇ ਨਮਾਸਤਾਸ ਜਬੇ ਅਦੇਸੰਗ ਅਦੇਸੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਅਭੇਸੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਮੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਨਿਰਭਾਮੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਭੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਖਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਥਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਪਾਲੇ ਨਮਾਸਤਾਸ ਦੇਵੈ ਨਮਾਸਤੰਗ ਅਭੇਵੈ ਨਮਾਸਤੰਗ ਅਜਨਮੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਸੁਬਨਮੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਗੌਣੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਪਾਉਣੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਰੰਗੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਪੰਗੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮਾਸਤਾਸ ਦਿਆਲੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਅਭਰਣੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਮਰਣੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਜਰਾਰੰਗ ਨਮਾਸਤੰਗ ਕਰਤਾਰੰਗ ਨਮੋ ਸਰਵ ਤੰਦੇ ਨਮੋ ਅਸਤਾ ਬੰਦੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਨਰਸਾਕੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਨਿਰਭਾਕੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਰਹੀਮੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਕਰੀਮੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਅਨੰਤੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਮਹਾਂਤੇ ਨਮਾਸਤਾ ਸਰਾਗੇ ਨਮਾਸਤੰਗ ਸੁਹਾਗੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਸੋਖੰਗ ਨਮੋ ਸਰਵ ਭੋਖੰਗ ਨਮੋ ਸਰਵ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸਰਵ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਪਾਲੇ
चाचरी छंद तक प्रसाद अरूप अनूप जूह पूह अलेख पेख नाम काम है अदेह पेह जीत पीत त्रमान दान त्रिवर्ग सरग अनिल है अनाद है जय जाद है जन्म वर्ण भूत वर्ण है गांजा पांजा चूझ है चांज है अमीघर भीघ दंध मंद है निर्भूज है सूझ है अकाल है जाल है अल्लाह है जह अनंत है महंत है अली केन्द्र श्री केन्द्र लंब है संभ है अगम है जम है भूत है सूत है अलोक है अशोक है अकर्म है ब्रह्म है जीत है पीत है वाय गाय मान अनदान है अनेक है फिर एक है भुजंग प्रयादंग नमो सर्वमान्य समस्त निदान्य नमो देवदेव अपेक्षी अपे वे नमो काल काले नमो सर्व काले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पावणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे नमो पन पाने नमो मन माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पन पाने नमो गीत गीते नमो तन ताने नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो पन पाने नमो बद बादे अनंगी अनामे समाधि स्वरूपे परपंगी परमाथे समाधि भूते कलांकंग बिना नेक लंकी स्वरूपे नमो राजराजेश्वरंग परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरंग परम सिद्धे नमो राजराजेश्वरंग परम हृदे नमो सहस्रपाणे नमो अस्त्रमाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षीय परमे भोगीय भुगते नमो जोग जोगेश्वरंग परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत प्रेत देव सुधर्मे नमो रोगहर्ता नमो राग रूपे नमो शाशांग नमो भूप भूपे नमो दान दाने नमो मन माने नमो रोग रोगे नमो संशनाने नमो मंत्र मंत्रंग नमो यंत्र यंत्रंग नमो इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सचदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे रूपे समाकुल निवासी सदा सिद्धता बुद्ध दृढ़ करता दूरदर्दंग अगंगो घर्ता परं परम परमेश्वरं पुरुष पालं सदा सर्वदा सिद्धता दयालं अशेदी अपेदी अनामंग कामं समाज दुबराजी समाज दास धामं तेरा जोर जाचरी छंद जले हैं थले हैं पीता वे हैं प्रभु अजूआ दे सपे सहे भुजंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्व माने समाज दीन धान्य नमाज तुंग नरनाथे नमाज तुंग परमाथे नमाज तुंग गंजे नमाज तुंग पंजे नमाज तुंग काले नमाज तुंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वभेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाही नमो मा माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्वमंत्रंग नमो सर्वजंत्रंग नमो सर्वदृष्टंग नमो सर्वग्रेशंग नमो सर्वरंगे दर्भंगे अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समातंग प्रसिजे कृपालंग स्वरूपे को गर्भंग प्रणासी सदा सर्वदा आर्दिंग निवासी चरपट छंद दव प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे खल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे खल धर्मंग लर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुक्ता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रूपाल छंद दव प्रसाद आदरूपन आदमूर्द योन पुरख पार सर्वमांत्र मान देवा बेवाद उदार सर्वपालक सर्वकालक सर्वगोपन काल जत्र तत्र विराजी अवधूत रूप प्रसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आदि पुरख उदार मूर्द योन आद शेख देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा हुए फैलु अनुराग नाम काम बीन पेख तामू न जाहि सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मान तदाहे एक मूर्त अनेक दर्शन किन रूप अनेक खेल खेला खेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानी जे बे दर्क देव रूप रंग न जात बात सुजानी के जेव तात मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन चक्र बकर फिर अजद्र जाक मानी प्रतीन लोक चौदह के विखय जग जा पी जय जाप आदि देवन आदि मूर्त थप सब जय थाप परम रूप बनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व विश्व रज सुयम पवगण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सुपरम रहत भूतल कपेश
अंग राग न रंग जा कह जात पात न नाम गर्भ गंजन दोष भंजन मुक्त दायक काम आप रूपा मी कान एक पुरख बचूद गर्भ गंजन सर्व भंजन आदि रूप सूद अंग ही न पंग नात्मिक पुरख पारु सर्व लायक सर्व कायको सर्व को प्रत पारु सर्व गंता सर्व हंता सर्व ध्यान पेख सर्व शास्त्र न जानी जे रूप रंग अर देख परम भेद प्राण जा कहे नित भक्त नित कोट सिमरत प्राण शास्त्र न आवई बहु चित मद पार छंद तव प्रसाद गुणगान उदार में मा पार आसन पंग उपमान अंग अनुभव प्रकाश निर्दन नाश राजन बाशान सार राजन राज पानन पान देवान देव उपमा मान इंद्रान इंद्र बालन बाल रंगन रंग कालन काल अनुभूत अंग अंग गर्मित पार गुणगान उदार मुन गण प्रणाम निर्पैन काम आत दोत प्रचंड मृत गति अखंड अलिष्ट कर्म अदृष धर्म सर्व प्रणाढ़ अण दंड बाढ़ जाचती छंद तव प्रसाद गोबिंदे यम कंधे उदारिय पारी हरियंग करियंग निर्नामे कामे पजंग प्रयाद छंद चतुर चक्र करता चतुर चक्र हरता चतुर चक्र दाने चतुर चक्र जाने चतुर चक्र भरती चतुर चक्र भरती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र माने आए चतुर चक्र दाने आए चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय जन्मंग जाय न चित्र न मित्र परयां पवित्र प्रदिशा दिशा दृशा कृषा भगवती छंद तक प्रसाद कथती क्या सच देशा क्या बिज बेसा क्या गंज कर्म है क्या पंज भरम है क्या बिज लोका क्या दृत शोक है क्या अवधूत वर्ण है क्या विभूत कर्ण है क्या राजंग प्रवाह के धर्मंग जाए क्या अशोक वर्ण है क्या सर्वा भरण है के जागतं कृतियां हैं कि क्षत्रंग क्षत्रिय हैं कि ब्राह्मण स्वरूप है कि अनुपा अनुप है कि आदो देव है कि अपेव है कि चित्रंग भिन्न है कि कह दीना है कि रुचि जा कर ही मेरा कहे कि पाक बेऐब है कि गैबुल गैब है कि आप बुलगना है कि शाह निशाह है कि कारण कुनंद है कि रुचि देहंद है कि राज करीम है कि कर्म करीम है के सर्वं कली हैं के सर्वं गली हैं के सर्वत्र माने हैं के सर्वत्र दाने हैं के सर्वत्र गौन हैं के सर्वत्र भावन हैं के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीना है के सर्वत्र लीना है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र अत्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र माने हैं सदैव प्रधान है के सर्वत्र जापे आएंगे सर्वत्र थापे आएंगे सर्वत्र भान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलीमा है के परमं भीम है के आखलो लाम है के सैव कलाम है के हुसनल वजू है तमाम रजू है हमेशल सलाम है असली किसम धाम है गरीब उल करता है गरीब उल परास्ता है बिलंदुल मकान है जमील उल जमान है तमीज उल तमाम है रजू उल नदान है हरी फुल अजीम है रजा है गरी कीना है नेकुल तरंग है पेद है पांग है आशीज उल निवाज है गनी उल खराज है गन निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रवाह है सुजुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है भेदी अनूप है समाज तो पराज है सदा सर्वसाज है समाज तो सलाम है सदैव काम है निर्वास रूप है गाद है नूप है अंगाद रूप है नाद रूप है अनंगी अनाम है त्रिपंगी त्रिकाम है त्रिवर्ग त्रिपादी अगंजी अगादी सुभंग सर्वभाग्य सुसर्व

गोविंद सहाई सुख सहज आनंद सगल स्यों वाक ब्याद न काई। मन मह सतगुर ध्यान धरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। जैत सरी महला पंजवा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कोई जाने कवन इहां जग मीत जिस होए कृपाल सोई बद बुझै ताकि निर्मल रीत। कोई जानै कवन इहां जग मीत जिस होए कृपाल सोई बद बुझै ताकि निर्मल रीत रहाउ। मात पिता बनता सुत पा बंद पष्ट मीत यार भाई पूर्व जन्म के मिलाय संजोगी अंत है को न सहाई। मुकत माल कनक लाल हीरा मनोरंजन

हस्त रथ अशुभ पवन तेज धनी भूमन चतुरंगा संग न चालियो इन मह कछु है ऊठ सुधायो नंगा हर के संत ब्र

रखियो परसों तो धर्म कमाया उन्हीं दुनिया तोड़े बंधना पानी थोड़ा खाया कुंभक अगला नित देवा चढ़े सवाया बड़े आई बड़ा पाया

0: सर्व संतन एक संतन एक हो जाने से हो कृष्ण सर्व देवा देव स्वास्थ्य आत्मा
1: आत्मा
0: नानक साचा दास है कोई ना जन दे भगा मन है गुरगिन जाना हुए बोली देहा काले कालना से देहो ना उपजारी है
2: खेडिया जिस वर्ग गया हारिया पढ़िया ते उमिया विचार गए विचारिया मुहचला सो गए मारिया मुहचला सो गए मारिया।

सुख मुनि सुखे अमृत प्रभु नाम भगत जना के मन विश्राम रहाओ। प्रभु कै सिमरन गर्भ ना बसै, प्रभु के सिमरन दुख जम न सै, प्रभु के सिमरन काल पर हरे, प्रभु के सिमरन दुश्मन टरै, प्रभु सिमरत कष्ट बिगन न लागै, प्रभु के सिमरन अनदिन जागै, प्रभु के सिमरन भौ ना व्यापै, प्रभु के सिमरन दुख ना संतापै, प्रभु का सिमरन साध के संग सर्व निधान नानक हर रंग, प्रभु के सिमरन रेत सिद्ध नौ निध, प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत्व।

यंत्रासा प्राव के सिमरन पूर्ण आसा प्राव के सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद माय समाय प्रभु जी बसे साध की रचना नानक जन का दास संदसना प्राव को सिमरे सी तरमंते प्रभु को सिमरे सी पतवंते प्राव को सिमरे से जन प्रवान प्राव को सिमरे से पुरख प्रधान प्राव को सिमरे से बेमुताजे प्राव को सिमरे से सर्व के राजे प्राव को सिमरे से सुखवासी प्राव को सिमरे सदा विनासी सिमरन दे लागे जिने आप दयाला नानक जान की मंगे रवाला प्राव को सिमरे से पर उपकारी प्राव को सिमरे तिन सद बलिहारी प्राव को सिमरे से मुख सुहावै प्राव को सिमरे तिन सुख बिहावै प्राव को सिमरै तिने आत्म जीता प्राव को सिमरै तिन निर्मल रीता प्राव को सिमरै तिने अंधक नेरे प्राव को सिमरे बसे हर नेरे संत कृपा ते अंधन जाग नानक सिमरन पूरे भाग प्राव कै सिमरन कार्ज पूरे प्राव कै सिमरन कबूना झूरै प्राव कै सिमरन हर गुण बाणी प्राव कै सिमरन सहस माणी प्राव कै सिमरन नैचल आसन प्राव कै सिमरन कमल बिगासन प्राव कै सिमरन आना चुनकार सुख प्राव सिमरन का अंतना पार सिमरे से जान जिन को प्रमया नानक तिया शरणी पया हा सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग बेद उपाए हा सिमरन भय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीचों कुंड जाते हा सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन क्यों सगल अकारा हर

जय प्रसाद सुख तेज सुई जय मने आठ पैरता का जस गावी जय जय प्रसाद तुझे सब कौ मन मुक्ता को जस रसन बखान जय प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जब दग मन पावे नानक पासी ती कर जावे जय प्रसाद अरु कंचन दे लिवलावो तिसराम स्नेही जय प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन शरणी पर ठाकुर प्रभ ताके जय प्रसाद तुझको ना पहुंचाए मन सा सा सिमरो प्रभ उचे जय प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करे जय प्रसाद या भूखन पैरी जय मन ती सिमरत क्यों आलस की जय जय प्रसाद असव हस्त असबारी मन तिस प्रभ को कबू ना बिसारी जय प्रसाद बाग मिलख तना राग प्रोए प्रभ अपने मन जिन तेरी मन बंत बनाई उठ बैठ सतिसे त्याई तिसे त्याई जो एक अलखा इहा उहा नानक तेरी रख जय प्रसाद करे पुन बोदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान जय प्रसाद उचार व्यवहारी तिस प्रभ को सा सा चितारी जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप जय प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सिमरो सदा जनरात जय प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कह जय प्रसाद सुने करनाद जय प्रसाद पिख विस्माद जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख सह जीवसना जय प्रसाद हस कर चले जय प्रसाद संपूर्ण फल जय प्रसाद परम गत पावे जय प्रसाद सुख सह समावे ऐसा प्रभु त्याग वरकत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जय प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल ना मन विसार जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ता को जाप जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जय प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू ता सिवराच जय प्रसाद सब किंगत होए नानक जाप जपे जप सोए आप जपाए जपे सुनाओ आप गवाए सुवर गुण गाओ प्राव कृपा ते हुए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्राव सु प्रसन्न बसे मन सोए प्राव दया ते मत उत्तम।

की शोभा अंतर, सार की शोभा उचे उची, सार की शोभा मुची मुची, सार की शोभा साध बने आई, नानक सार प्रभेद ना पाई।

ब्रह्म ज्ञानी हुए अस्परि ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व को सुख ब्रह्म ज्ञानी

जला ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रगास, जैसे तारे ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी उते ऊंचा, मन अपने सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन भय, नानक जिन प्रव्याप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मैया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पैया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल।

ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाह, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार्यो महा, ब्रह्म ज्ञानी के नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले धावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कह होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कह के रंग, ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी के नाम प्रभार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सज जागत, ब्रह्म ज्ञानी अनुभूति आगत, ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हिता, ब्रह्म ज्ञानी के हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्या, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को उस बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप

कबू महा क्रोध विकराल, कबू सर्व की होत्रबाल, कबू हुए बह बड़ राजा, कबू पिखारी नीच का साजा। कबू आप कीर्त में आवे, कबू पला पला कहावे, जो प्रव राखे तेवी रहे, गुर प्रसा नानक सच कहे। कबू हुए पंडित करे बखान, कबू मोन धारी लावे ध्यान, कबू तट तीर्थ स्नान, कबू से साधक मुगयान, कबू कीट हस तंग हुए जिया। अनक जोन पर मैं परमिया, नानू नाना रूप जो स्वांगी दिखावे, जो प्रभ भावे तिवे रचावे, जो तिस भावे सोई होए, नानक दूजा वरना कोय। कबू सात संग ते पावे, उस स्थान ते बहुना आवे, अंतर हुए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मन तन नाम रते एक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म के संग। ज्यों जल मैं जलिया ए खटाना, त्यों ज्योति संग जो समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सतगुरु।

गर्भ गलयास्पदी जिसके अंतराज मांसु नरक पाती हो बसवान जो जाने में जोवन बंत सोहत विस्तां का जंत आप सो कर्म बंध कहावे जन्म मरे बोजोन प्रमावे धन भूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानक यहां मुकत आगे सुख पावे तन मानता हुए कर गरबावे तृण समान कर संग ना जावे बोला स्कर मान के ऊपर करे आस पाल भी तरता का हुए विनाश सब ते आप जाने बलवंत खिने में होए जाए पसमंत किसे ना बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुर प्रसाद जहाँ का मिटे विमान सो जन नानक दरगे प्रवान कूट कर्म करे हो तारे श्रम पावे सगले व्यर्थार अनक तपस्या करे अहंकार नारक सुर्ग फिर फिर अवतार अनक जतन करया तुमने दरबार दरगे को कैसे गवे आप सो जो भला कहावे तिसे भलाई निकट ना आवे सर्व की रेण जहाँ का मन होए कहो नानक ता की निर्मस होए जाव लग जाने मुझे कष्ट हुए तब इसको सुख नाही कोई जाबे जाने मैं किस करता तबला गर्भ जोन में फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग न चल नाही चीत जब लग मोह मगन समाय तब लग धर्म राय देश जाय प्राव कृपा दे बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक छूटे सह खटेला कूट धावे तृप्त ना आवे माया पाछे पावे अनक भोग विख्या के करे न त्रिपतावे खप खप मरे बिना संतोष नहीं पूरा जय सुखन मनोरथ बिरते सब का जय नाम रंग सर्व सुख होए वडभागी किसे प्राप्त होए कारण करावण आपे आप सदा सदा नान कर जाप करण करावण करने हार इसके हाथ कहाँ विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप आप रव सोए जो किसी नो सो अपने रंग सब से दूर सबू के संग बूझे देखा करे बवेक आपे एक आपे अनेक मरे ना बिन से आवे ना जाए नानक साधी हिरिया समाए आप उपदेश समझे आप आपे रचिया सब के साथ आप कीनो अपन विस्तार सब किश उसका करने हार उसे पिन कहो किश होए थान थनंतरी कैस होए अपने चाहते आप करने हार कोत करे रंग अपार मन में आप मने अपने माहे नानक कीमत कहना जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने वख्यानी सच सच सच सब कीना कोट मदे किने बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदरिया पार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी सरवण।

नाना वेद किन्नो विस्तार प्रभु अविनाशी एक अंकार नाना चलत करे खिन माए पूर्यो पूर्ण सब ठाए नाना विद कर बणत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवे नान करनाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे कंड ब्रह्म।

नाम के तारे पुरियासा पवन नाम के संग उदरे सुन सरवण कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सूजन गत पाए रूप सत जा का सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जा की बाणी सत पुरख सब माए समाणी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पात सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब परि सत नाम प्रभु का सुखदाय विश्वास सत नानक गुरते पाई सत वचन साधु उपदेश सत जन जा के हृदय प्रवेश सत निरत बूझे जे कोई नाम जबता की गत हुए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सृष्टो करने हार अवर ना बूझ करत विचार करते की मित ना जाने किया नानक ज्योति भावे सुवरतिया बिस्मान बिस्म पे बिस्मा जिन बुझिया तिस्याद प्रभु के रंग राज गुरु के बचन पदार्थ लयो दाते दुख काटना जा के संग करे संसार जान का सेवक सो बटपागी जन के संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे सलोक आद सच जुगाद सच हैपी सच नानक उसी पी सच आष्टपदी चरण सत सत परसनार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत ध्यावन हार आप सत सत सवधारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभगता सुरत सत सत जस सुनता पूजनार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत सरूप हृदय मानिया कारण करावण तिन मूल पछानिया जा के हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ग्यान तिस मन प्रगटाया भैते निरप होए बसाना जिस ते उपजिया तिस माए समा

आवत कऊ नरक को सुर्ग मिश्यावत आल जाल माया जंजात होमे मोह परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार के बखान अपन खेल आप कर देखे खेल संकोचे तो नानक एक है ज्यावगत भगत आप जय पसरे पसार संत प्रताप दो पाका आपे धनी उनकी शोभा उन्हों बनी आपे कोत करे अणत चोज आपे रस भोगण निर्जोग जिस भावै तिस आप लावे जिस भावै तिस खेल खिलावे बेस मारिया था गंध तोले त्यो बुलावो त्यो नानक दास बोले सलोक जी जंत के ठाकुर आपे बरतन हार नानक को पसरिया दूजा कह दिसार आसपदी आप कथिया सुने हार आपे का विस्तार जांत भावता सृष्टि उपाय अपने भाने ले समाए तुम ते भिन्न नहीं किशोए अपन सूसब जगत परोए जान चुको प्रभ जी आप जाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत्का बेता नानक सगल सिस्ता जेता जी जंत्र सब ताके आ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिसरा कि कोई ना मारे सो मुआ जिस मनो विसारे तेता जी अवर कहाँ को जाए सब श्री निरंजन राज जी की जूत जाके सब हाथ पूर्ण पूर्ण अंतर बाहर जानो सात गुण दान बेअंत अपार नानक दास सदा बलिहार पूरन पूरे दयाल सब उपरोत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रियो ब्याप प्रतिपाले जियन वो भांत जो जो रचे सो तिसे त्याज जिस भावे तिस लय मिलाए भगत करे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मानिया करण हर नानक इक जानिया जान लागार एक नाए तिसकी आसना बिरथी जाए सेवको सेवा बनियाए हुकम बूझ परम पद पाए से उपर नहीं विचार जाके मन बसिया निरंकार बंधन तोड़ पै निर्भय अण दिन पूजे गुर के पैर ए लोग सुखी पर लोग सुहेले।

सफल दर्शन सुंदर रूप तन सेवा सेव प्रवान अंतरजामी पुरख प्रधान जिस मन बसे सोत निहाल ताके निकट न आवत काल अमर भय अमरा।

कवन कर निकट कवन किए दूर आपे आप भरपूर अंतर्गत जिसे आप जनाए नानक दे जन आ बुझाए सर पूजा वरतारा सर नैन आप खनारा सर समगरी जा का तना आपन जस आप ही सुनाया वन जान खेल बनाया गया कारी की माया सब के मध्य लोग जो कि सहना सो आपे कह गया व्या गया जाए नानक जा पावे तल समाए से हो सुनाई बुरा और कहो कि किस करा भला कर तू ते अतनी की आपे जाने अपने जी की आप साज धारी सब साच उद पोते अपन संग्राज ताए गत मित कही ना जाए दूसरो सोजी पाए इसका किया सा प्रवान गुर प्रसाद नानके जान जो जाने से सदा सुख हो या मिला ले प्रभ सोए ओ तनवंत कुलवंत पदवंत जीवन मोति जिसरे दे भगवंत धन धन धन जन आया जीव प्रसाद सब जतराया जान आवन कहे स्वाओ जन के संग चित आवे नाओ आ मुक्त मुक्त करे।

श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र खजूरी अंदर सुभाए मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, आप जी अमृत गुरबाणी दा निर्धारित रागां विच कीर्तन सरवण कर रहे सी। आओ कुछ मिनट धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत गुरबाणी दी विचार आप संगत दे समक्ष रखनी है। विचार आरंभ करन तो पहला गुरु भक्ति फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत गुरबाणी विचों कीर्तन विच जो दो शब्द खुण बच्चियां पढ़ के गायन करके गईयां ने धन गुरु नानक साहिब जी का उच्चारण किया हुआ ये शब्द एक तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृत गुरबाणी सोहला साहिब जी के सरलेख हेत दर्ज है। दूसरी वरी यही शब्द धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के राग गौड़ी के अंदर दर्ज किया गया है। ते बड़ी भावना नाल उन्हें सरवण कराया तुम गावो मेरे निरभउ का सोहला जो पहला शब्द आपने सरवण किया। सोहले का अखरी अर्थ हुंदा है खुशी का गीत। भावे असी इस बाणी का सरलेख आम तौर से शब्द वरतने कीर्तन सोहला धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृत बाणी विच इहदा सरलेख है सोहला। सोहले का अखरी अर्थ है खुशी का गीत। धन गुरु नानक साहिब जी ने इस अमृत शब्द के अंदर मनुख के अंदर नू चंजोड़ के रख दिता कि तू ओ खुशी का गीत गा जिदे गाउण दे नाल जेड़े सोहले गाउण दे नाल तेरा जन्म ते मरन दोनों सफल हो जा। देखो शब्द है आपने सरवण किया तुम गावो मेरे निरभउ का सोहला। तुसी गौना करो सोहले दर ते खुशी दा गीत। किदे गीत गाओ कह लगे मेरे उस निरंकार दे उस निरभउ दे गीत गाओ जिन्हू किसे दा पहे है। हुण इसे गीत दा अर्थ केवल संसारक लफ्जां दा जोड़ तोड़ नहीं कदी धन गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विचों पुछिए महाराज सोहला केड़ा चंगा लगदा है। कह लगे ए सोहला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहला सतगुरु सुनाया। जो सतगुरु ने सोहला सुनाया है ते सोहला ओ गीत ओ गाई जिदे विच गुरु का शब्द तेनू प्रगट कीता है। गुरु ने जो गुरु ने शब्द सुनाया है बस इसे नू गाउन लग पई ए सोहला बन जावे। शब्द वरत्या ए सोहला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहला सत गुरु सुनाया। ए तिन कै मन वसिया जिन धुरों लिखिया जिन्ना दे मत्थे दे लेख मालक ने धुर तो लिखे ए सोहला गाउन दा सबब उन्हां नू प्राप्त होया। इस सोहले विच हजूर ने जेड़े अमृत बचन कहे ने ओ मैं संक्षेप जे अर्ज करने ने। पहला शब्द सोहला साहिब दा गुरु नानक साहिब जी दा। अखीरला शब्द सोहला साहिब दा धन गुरु अर्जुन देव जी दा। अंतर एना कहे पहले शब्द विच हजूर ने चेतावनी दिती है गा सकने ते निरभउ दा सोहला गाई क्योंकि मौत वाला दिन तेरे नेड़े आ रहा है। सोहले दे अखीरले शब्द विच धन गुरु अर्जुन साहिब कृपालू ने बेनती रूप विच कहा है कि तू सौण लगा है ते देख अखीरला शब्द तू पढ़िया है हो सकदा है ए नींद ए रात
तेरी जिंदगी दी आखरी रात होवे ते कितना चंगा होवे कि तू उस मालिक दी सिफत सलाह नाल जुड़ जा। एदे विच जिहड़ी उदाहरण दित्ती है, उदाहरण बड़ी खास मुरादी ते पेंडू जीवन नाल संबंधित है। शब्द आपां पढ़ने आ कि संबत साहा लिखिया, जो सोहिला साहब दे शब्द दे अखीर दे बचन। संबत दा अखरी अर्थ है साल। हजूर किन्न ने घर विच बच्ची दा जन्म हुंदा है, मां बाप ओनू प्रेम दे नाल लाड दे नाल पाल दे। धन गुरु नानक साहब किन्न ने जदो बच्ची जवान होई ते मां बाप नू एक फिक्र है कि किसे तरीके दे नाल वैगुरु सबब बनाए, कोई चंगा घर लभे, असि अपनी बच्ची दे खत पीले कर दिए, एदा व्याह हो जाए। साहब किन्न ने पुरातन समय दी उदाहरण के बच्ची जदो मंगनी, पहला कई साल तक ओदी मंगनी होई रहे, मंगन वेले कहना इन्ने साल बाद असी व्याह करांगे, ते जदो ओ साल आउना परत के मशीना मुकरर करना के साल दे इस मशीने विच बच्ची दा व्याह होवेगा। केवल मशीना नहीं, मशीने दा दिन ते तरीक भी मुकरर करनी। केवल तरीक नहीं, इथो तक दिन का समा भी निश्चित कर देना के इस वेले असी बच्ची दी डोली तोड़ देंगे। बाबा नानक साहब ने उस सारी रस्म नू तकिया, कहन लगे बच्ची दे व्याह दा साल पहला मुकरर कीता गया, दिन पहला निश्चित कीता गया, समा पहला मुकरर कीता गया। एक गल चेते रखी सोहले गाउण वालिया, शब्द सोहले नू गाउण वालिया, के व्याह दा समा ता बच्ची दे जन्म तो कई साल बाद निश्चित कीता जांदा है, पर मौत दा सदा मौत दा समा ता तेरे जन्म तो पहले निश्चित हो चुका है। कहन लगे साल भी मुकरर होया, दिन भी मुकरर होया, मशीना भी मुकरर होया। ते मैं कई बारी अर्ज करना गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी ने, क्योंकि ए सोहले दा संबंध खास करके व्याह वेले गाए कोई खुशी दे गीता नाल, उदो भी सोहलड़े गाए जांदे ने। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी ने तीन तरह की मौत मनी है, ते गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी ने तीन तरह के व्याहां दा जिक्र कीता। जदो बाणी पढ़िए ते हजूर नू पुछिए, कहन लगे चेते रखो व्याह शब्द असी वरतने आ, भावे गुरमत दी शैली विच हुण आनंद कारज कहने आ, पर बाणी विच शब्द व्याह भी वरतिया गया। तीन तरह के व्याह ने।

कोई दो कोई तीन कोई दस कोई सौ, मगर सारे कार्य स्वारण वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा। ते गुरसिख ये यकीन करता है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट लवा जो समर्थ है, जो मेरे सारे कार्य स्वारण वाला। भाई फरमाउंदे ने

द्वारका दे मालिक और द्वापर युग दे मालिक भगवान कृष्ण जी ते गरीब सुदामा दोनों ही बचपन दे इको गुरु दे शिष्य बचपन दोनों दा इको गुरु दे पास गुजरिया मगर ज्यों ज्यों वक्त बीतदा गया बड़े हो गए सुदामा गरीब रह गया भगवान कृष्ण महाराजे बन गए द्वारका नगरी दे मालिक बन गए ते पाईसा पाई गुरदास जी ने बहुत गहरे तल से जाके भगवान कृष्ण ते सुदामे दी मित्रता नु सामने रखदे होए कुछ अपने विचार फरमान कीते हन पौड़ी विच कहंदे ने कुछ मित्र दादियां निशानियां दित्तियां ने भगवान कृष्ण बारे ते सुदामे दे बारे कि किस तरह की मित्रता सी पाईसा फरमान करदे ने बिप सुदामा दाल दी बाल सखाई मित्र सदाए लागू होई बामणी मिल जगदीश दलिद्र गवाए कहंदे ने बिपता दा मारिया दलिद्री सुदामा सारे कहंदे ने कि ये भगवान कृष्ण जो अज दे मालिक ने ये उन्हां दा बाल सखाई मित्र है ते एडे वड्डे भगवान कृष्ण महाराजे जेड़े हन द्वारका नगरी दे जेड़े मालिक हन अनेकां गरीबां नू दान करदे हन सुख दिंदे हन ते ए बाल सखाई मित्र सताउंदा होया इसनू सारे कहंदे हन ए बाल सखाई मित्र है ते सताउंदा है बाल सखाई मित्र ते फिर भी गरीब है रोज उसकी पत्नी क्योंकि ब्राह्मण है सुदामा ते एदी पत्नी नू ब्राह्मणी कहा है कहंदे ने रोज ब्राह्मणी कहंदी है कि ए सुदामा तू जगदीश नू मिलते से वो तेरे दुख दूर कर देगा ते भाई साहब इसे मित्रता दियां निशानियां नू दसदे होए अगे फरमान करदे हन

भाई साहब फरमान करते ने घरों चल पिया सुदामा भगवान कृष्ण जी नूं मिलन वास्ते। ते रस्ते दे विच जिस तरह कोई गिन गिन के चलता है मैं कदों जावांगा कदों पहुंचांगा, ते सोचता है असीं ते बचपन दे मित्र सां ते हुण ते वड्डे हो गए, पता नहीं मैनूं पहचानन के ना पहचानन। चलिया गिणदा गटियां क्यों कर जाइए कौन मिलाए, कहिंदे ने मैं किस तरह जावांगा ते मैनूं मिलाएगा कौन उत्थे भगवान कृष्ण दे नाल। भाई साहब फरमान करदे ने इह सोचदा सोचदा सुदामा द्वारका नगरी दे विच पहुंच गया।

भगवान कृष्ण यशोदामे दी मित्रता दी निशानी पाईसा पाई गुरुदास जी ने बड़े ही गहरे जाके बड़े ही गहरी विचार विच जाके फरमान की थी। किसे मित्र नु मिलना होवे ते मित्र नाल हाथ मिलाया जांदा, किसे मित्र नु मिलना चाहे ते गलवकड़ी विच लिया जांदा है, पर किसे मित्र नु मिलना होवे ते अपना सिंघासन छड के भी जाया जा सकता है दूरों देख के, मगर भगवान कृष्ण सिर्फ सिंघासन छड के सुदामे वाल नहीं बदे। कहंदे ने इतनी निम्रता नाल भगवान कृष्ण वधे सुदामे वाल और सुदामे दे कोल जाके कहंदे ने सुदामे दी पहले प्रदक्षिणा ले। सुदामा खड़ा है और भगवान कृष्ण ओदी प्रदक्षिणा ले रहे हैं और प्रदक्षिणा लेके फिर सुदामे दे पैरी पैंदे हैं ते पैरी पै के सुदामे गरीब नू अपने गले लगांदे हैं। भाई साहब गहरे तल विच जाके सारे संसार नू ए मैसेज दे रहे हैं भगवान कृष्ण दा, क्योंकि सुदामा उना दा बाल सखाई मित्र है ते बाल सखाई मित्र होने दे नाते ओ दोनों एक गुरु दे शिष्य सन। ते जदों पहली बारी देखिया सुदामा मेरे द्वार से आया है, कहंदे ने दूरों देखिया देखते सुदामे वल रहे हैं पर सुदामे दे विचों अपने गुरु दे दर्शन कर रहे हैं। उस गुरु दे जिस गुरु पासों दोना ने बचपन दे विच सिख्या लई है। सुदामे दे विचों भगवान कृष्ण अपने गुरु दे दर्शन करदे होए सुदामे वल वधे ते प्रदक्षिणा लई जिस तरह के अपने गुरु दे ले रहे हैं, फिर जिस तरह प्रदक्षिणा लेके पैरी पै गए और पैरी पै के जदों तक पैरी पए हैं उदों तक सुदामे विचों अपने गुरु दे दर्शन कर रहे हैं। ज्यों गुरु दे दर्शन हो गए ते सुदामे नू अपनी गलवकड़ी विच लाया ते कहंदे ने फिर सुदामे नू लेके सिंघासन वल वधे। किस तरह वधे

भगवान कृष्ण। गुरमत अनुसार अपने विचार दे रहे हैं। मित्रता भी गुरमत अनुसार ल्यांदे हुए पैसा फरमान करते हैं कि भगवान कृष्ण सारे संसार नू की संदेशा दे रहे हैं। कहंदे ने सुदामा अपनी पत्नी दे कहन से चलिया सी कि भगवान कृष्ण कोल जावा ते अपनी गरीबी दूर करवा दे, मगर क्योंकि दोनों ही एक शिष्य दे रूप दे विच हन, गुरु एक है, शिक्षा एक गुरु पासों लई है, कि दोनों ही अपने अपने असूल ते कायम है। भगवान कृष्ण नू मिले सुदामा ते सुदामा ने अपनी गरीबी नू दूर करन लई भगवान पासों अपनी जबान तो कुछ मंगिया लिया। ते इधरों भगवान कृष्ण जी महाराज ने अपने मित्र दी गरीबी नू जेड़ी के सामने नजर आ रही थी, तन से कपड़ा नहीं, फटे पुराने कपड़े हैं, पैर विच जुत्ती कोई नहीं, और गरीबी दावे नाल महाराजे भगवान कृष्ण अपने मित्र नू मिलन आया है। ते महानता ए है भाई साहब फरमान करदे हन भगवान कृष्ण दी कि जिथे सुदामे ने अपनी गरीबी नू दूर करन वास्ते कुछ मंगिया नहीं, उथे भगवान कृष्ण ने सुदामे दी गरीबी नू ओदे सामने जतलाया भी। नहीं ते अमीर मित्र कहंदा है गरीब नू, भई तैनू कोई जरूरत है ते मैनू परमात्मा ने बड़ा कुछ दिता है, मेरे कोलों कुछ लै जा। ते गरीब होवे ते गरीब कहंदा है अपने अमीर मित्र नू कोई मेरी मदद कर दे। संसार दे विच ते इह कुछ देखण विच आउंदा है, मगर पाइसा भाई गुरदास जी जेड़ी रमज तक पहुंचे कहंदे ने दोनों ही अपने अपने असूल ते कायम। ते इह जानदे होए भगवान कृष्ण कि सुदामा अपनी जबान तो मंगेगा नहीं, ते भगवान कृष्ण ने बड़ा प्यार कीता, परदखना लई, पैरी पै के गले लगाया और ओदे चरण धो के उसनू अपने सिंघासन से बिठाया। ते सिंघासन से बिठाण तो बाद उसनू बड़ा प्यार कीता, इतना प्यार कीता, ते प्यार करन तो बाद भगवान कृष्ण कहन लगे सुदामा बचपन तो हुण जवानी आ गई है, इतनी उम्रा हो गई है, बड़ा चिर होया है मिलिया नू, कोई गुरु दी सेवा दी कथा सुना। गुरु दी सेवा दी कथा दी महानता दर्शा रहे हन कि गुरु दी सेवा दी कथा करन नाल गुरु याद आउंदा है, गुरु याद आउन नाल गुरु दा दस्या होया नाम याद आउंदा है, ते गुरु दा नाम याद आउन नाल जदों नाम दसम द्वार दे विच टिक जांदा है, एकागर चित मन हो जांदा है। भाई साहब भाई गुरदास जी फरमान करदे हन, कहंदे हन उस वक्त जितने भी पिछले माड़े कर्म हन ओ सारे दे सारे कटे जांदे हन। भाई साहब फरमान कर रहे हन गुरु दी सेवा दी कथा दी महानता। ते गुरबाणी विच भी स्वामी रामानंद जी महाराज दा एक शब्द है। ये स्वामी रामानंद जी महाराज कबीर साहब दे भी गुरु होए, भगत रविदास जी दे भी गुरु होए, ते पीपा जी दे भी गुरु होए, अनेकां ही भगतां ने इन्हां पासों गुरु दीख्या लै के नाम जप के संसार नू उस परिपूर्ण परमात्मा दे नाल जोड़िया। ये इन्हां दी बाणी दा शब्द है कि शब्द की है, शब्द किस तरह कोट कर्म करोड़ा ही माड़े कर्मा दा नाश करदा है। स्वामी रामानंद जी फरमान करदे हन गुरबाणी दे विच

महानता। गुरु शब्द दी गुरमत अनुसार भगवान कृष्ण ते सुदामे दी मित्रता बारे फरमान कर रहे हैं। कहंदे ने सिंघासन से बिठा के सुदामे नु जोड़ दिता गुरु दे शब्द नाल। गुरु दे शब्द नाल ज्यों जुड़िया मानो दसम द्वार पहुंच गया। द्वारका नगरी दे मालिक ने नौ द्वारियां विच्चों कढ के दसम द्वार पहुंचा दिता जिथे उहदे सारे ही माड़े कर्म जेड़े सन ओह नाश हो गए। भाई साहब भाई गुरदास जी फरमान करदे हन कोई उहदे नाल क्योंकि कहंदे हन साखी दे विच कि सुदामा गरीब सी उहदे कोल चावल बन्ने होए सन पोटली दे विच ते भगवान कृष्ण ने खोए पुछिया कि मेरी भाभी ने की मेरे वास्ते भेजिया है। भाई साहब इहदा कोई जिक्र नहीं करदे। भाई साहब कहंदे हन जिहड़ा दसम द्वार पहुंच गया उसनू ते अपनी होश ही कोई नहीं। ओह की भगवान कृष्ण नू जवाब देवेगा? अंतर ध्यान कर दिता सुदामे नू। कहंदे ने भगवान कृष्ण ने उस वक्त जदों उहदे लेखे मेटण दा वक्त आया क्योंकि गुरु शब्द नाल जोड़िया होया सी ते पोटली चों एक एक चावल दा दाना कढ के अपने मुंह विच पांदे गए। एक दाना मुंह विच पाया ते धर्म दे दिता, दूसरा दाना मुंह विच पाया दंदा थले चबाया ते अर्थ दे दिता, तीसरा दाना मुंह विच चबाया ते कहंदे ने भाई साहब भाई गुरदास जी उस दीआं सारीआं कामनावां पूरीआं कर दित्तीआं, चौथा दाना मुंह विच चबाया ते चबा के आशीर्वाद दिता कि जा सुदामा तू मुक्ति भी प्राप्त कर गया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष का दाता भगवान कृष्ण ने चारे पदार्थ उसनू दे दिते ते भाई साहब फरमान करदे हन

सारे ही अपने जीवन च बोलते रहते हैं। संसारी होने के नाते अगर असी बहुता अच्छा ना भी बोलते होइए तां भी जदों असी सत्संग विच जुड़ के प्रभु परमेश्वर के गीत गाते हाँ, प्रभु के चरणा कमलों विच जुड़ के अरदासां करते हाँ, बेनतियां करते हाँ, तदों असी सारे ही अच्छा और शुभ बोलते हाँ। पर क्योंकि साडा तन करके तो सत्संग विच जुड़ना हुंदा ही है, पर मन करके असी कदी कदी जुड़ते हाँ। एहो ही कारण है कि मालक दी दरगाह विच साडियां कीतियां हुईयां सारियां अरदासां बेनतियां कबूल नहीं हुंदियां। पर गुरबाणी गवाह है कि बाबा नानक गुरुदेव नानक अपने जीवन विच जदों जदों भी बोले जो भी शब्द मुख चो उचारण कीते वो तत्काल परमात्मा दी दरगाह विच प्रवान होए। साहिबां दा फरमान है गुरबाणी द्वारा, गुरु नानक बोले दरगह प्रवान, क्योंकि गुरु ते परमेश्वर दे विच कोई अभेदता नहीं, गुरु परमेश्वर एको जान, गुरु ते परमेश्वर विच कोई फर्क नहीं, ये दोनों एक समान हन। तो गुरु नानक देव जी का बोलिया होया सदा ही प्रवान होया, और मेहरबान जो सदा मेहरां दा दाता है, जो भी उसका दास बन जाता है दास की लाज सदा ही मेहरबान रखता है, और उसका बोलिया होया हमेशा ही मालिक की दरगाह दे विच कबूल होता है। सतगुरु फरमान करते हैं, गुरु नानक बोले बोले

जीवन दे विच मनुख जप भी करदा है और यथा शक्ति अगर ज्यादा कोशिश करे ते तप भी कर लेंदा है। आम देखन दे विच आउंदा है कि रब दे नां ते कई व्रत भी रखते हैं और रोजाना दा नेम भी करते हैं। सवेरे उठ के परमात्मा दी भगती करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। साहिब फरमान करते हैं कि सारा कुछ परमेश्वर की कृपा नाल गुरु तो ही प्राप्त हुंदा है।

आप हर दुनिया आचार व्यवहार जात हर दुनिया महा आनंद कीर्तन हर सुनिया।

ताप जो तप है, व्रत है, नेम है, आचार तो मतलब करैक्टर है मनुख दा, और व्यवहार जो रोज दा व्यवहार करदा है, जात जो कम तो पहचानिया जांदा है। साहिब फरमान करदे हन कि एक सारा कुछ जे मनुख करदा होया अपने गुरु दे अर्पण कर देवे, ते मानो के जो त्याग दे विच उसनु सुख प्राप्त होवेगा, जो शांति प्राप्त होवेगी, ओहो ही सच्चा सुख है और ओहो ही सच्ची उसनु शांति प्राप्त होवे। साहिबां दा फरमान है कि जे कोई चाहे कि मैं महा आनंद दी प्राप्ति कर लवा, ते महा आनंद दी प्राप्ति है कि उस मालिक दी कीर्ति कीती जावे, उस मालिक दा जस गाया जावे। जैसा कि गुरु नानक पातशाह ने अपने जीवन दे विच कीता, अपने जीवन दे विच उन्हां ने होर कोई योग नहीं कीता, इको ही योग कीता कि उन्हां ने अपने प्राणा राही प्रभु दी कीर्ति कीती। इतना गाया प्राणा करके, इतना गाया कि उन्हां दा जप ही ज्ञान हो गया, उन्हां दा तप ही ज्ञान हो गया। और साहिब फरमान करदे हन कि जेड़ा उस परमात्मा दी कीर्ति सच्चे दिलों करदा है, ओ मालिक दी प्राप्ति दे विच सफल हुंदा है।

हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी हरी

0: केरबोदी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ए प्रोग्राम FM रेडियो CISA 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे।
1: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तो आप जी नु पता ही है, जे नहीं तो वह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

मेरे मोटो ही पा दो मेरे मोटो ही पा दो सारी कहन लग्या मती दास तेन आरे देना चीर देना ते ए भाई मते दास कहन लग्या मैं अपना मन तिखा कर दें ते तुसी आपका आरा जेड़ा इस नू तिखा कर लो। ए कहन लगे भी असी ता जेड़ा ए आरा है टकोरे दे नाल प्यौन ला के पहला फिर टकोरे दे नाल इस नू तिखा करांगे आरे नू ते तू आपका मन कादे ना तिखा करेगा। ये कहन लग्या मैं बाणी जपजी साहब की बाणी है जिहड़ी इस उत्ते ला के उसनू पढ़ के आपका मन जिहड़ा तिखा करूंगा। कहने जलाल कहन लगे है मती दास तेनू आरे ना चीर देना ते कोई अंत मिथिया है तो वह हल कर दईए किसे नू मिलना कोई होर गल है वह पूरी कर दईए तेरे। मती दास की कहन लग्या उन्हां नू मती दास कहंदे इक निपरे खड़ा जलाद बोले मती दास ना दूसरी गल होवे जो कुछ मंगना है मुंह मंग साथों हाजिर करिए घड़ी ना पल होवे। मती दास ने मोर जवाब दिता अंत समय मेरे मुश्किल हल होवे मेरे सीस उत्ते जदों चले आरा मेरा मुख गुरु पिंजरे वल होवे। सारे संगता को सतनाम श्री वाहेगुरु। सिखी की है देखो सर ते आरा चलन लग्या भाई मते दास ब्राह्मणा दा मुंडा सी सिखी विच जात पात कोई नहीं ब्राह्मणा दा मुंडा सी पर गुरु दे नाल ओ जुड़िया होया सी। कह भाई मती दास दे सर ते आरा रखन लगे है ते भाई मती दास आरे ना गल्ला करे जा रहा कह रहा आ रहा की आ जेड़ा है बिलकुल सीधा पौना है क्योंकि मैं भक्त दे मेरे होंगे शरीर दे सिक्खी दे नाल दे उत्ते मैं पौने है ते चीर बिंगा टेढ़ा ना हो जावे ते मेरे सच्चे पातशाह किते इओं ना कहन लोकी इओं ना कहन में आरा आ रहे ने चीर आ जेड़ा ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੇ ਦਾਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਰੇ ਦਾ ਚੀਰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਚੀਰ ਸਿੱਧਾ ਪਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਆ ਰਾਹ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਆਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਭਾਈ ਮਤੇ ਦਾਸ आरे नू की आखिरा करे आवे आ मैं तेनू सिर दे उत्ते बिठावा की कहना सुनो ढाडी जत्था इउं बयान करदा है।

咱们是个民家奴，咱们在镇里家给阿里给家干起了，咱们在镇里家给阿里给家干起了，马路边上子的咱们是个民家奴家奴，马路边子。आरो तीर जांत दे जाबर जुल्मी चाहनू कर्म दे चंदे जागे हरिक जगा चलाओ कर्म दे चंदे जागे हरिक जगा चलाओ जुड़ जांत दे रस्ते पादे

पता लग गए तेरे तो टुट के, तेरे तो बिछड़ के हालत की हो जाती है। तेन दुध है ते बाहरी, गऊ दुध ना दिंदी होवे,

पाती नहीं। जल बिन खाक कुमलावती उपजे नाही दाम। हर ना नाम लिए सजने कत पाइए विश्राम। जीवन केवल भटकना ही रह जाता है। बारह माह का आरंभ होया है। पहला शब्द मन को बारह माह विच वर्त रहे सारे संस्कारों का एक कवरिंग लेटर है। समूचे रूप विच एक जानकारी है। भला महीनिया का संबंध साढ़े नाल की है। एक कुदरत का हिस्सा ने, एक प्रकृति का हिस्सा ने, एक संसार का हिस्सा ने, निरंकार का नहीं। जदों अजे संसार नहीं सी बने उदों महीने भी नहीं सन। जदों अजे दूजी कुदरत नहीं सी बनी उदों रुत्तां भी नहीं सन, उदों वरे भी नहीं सन। गुरु ने बाणी विच आख दिता, कहन लगे अरबद नरबद धुंदुकारा, धरन ना गगन ना हुक्म अपारा। कहन लगे ना दिन रहन।

देंगी सब तो बस गए। खन मंडल पाताल सब कुछ इसके अंदर है। कहने लगे मैनू इस ब्रह्मांड की संसार के बारे सूरज के चाल नाल संबंधा नाल पैदा हुई हुई रुत्तां दा मन ते असर कोई नहीं, क्योंकि यह तपत मैनू सता नहीं सकती। दुनिया के लोग भी इस तपत का उपराला बड़ी आसानी नाल कर लेंदे ने। जो बहुत बहुत ही तपत आउंदी है पखे लगा लेंदे ने, कूलर लगा लेंदे ने, एसी लगा लेंदे ने, बदल लेंदे ने। इन्हां रुत्तां दा असर नहीं रहा। पर गुरु कहते ने मैं देखना एक अंदर भी दुनिया वस रही है। उनके अंदर की दुनिया जिहड़ी है जदों वह असरअंदाज होंदी है उन्हों परिवर्तन में लियाने लई उन्हों बदलने लई बड़े वड्डे उपराले की लोड़ है। गुरु कहते ने मैं इस लई उन्हां बारह माह जिहड़े बारले महीने ने केवल उन्हां दा नाम वरत्या एग्जाम्पल वजो। मैं गल करनी चाहना जिहड़ियां तेरे अंदर रुत्तां बदलदियां ने, तू उन्हां रुत्तां तों किवें बचना है? और रुत्तां तेरे अंदर किवें परेशानियां पैदा कर रही ने? ते अंदर भी एक बदलिया होया सूरज ते बदली हुई शीतलता अंदर भी बैठी है, अंदर भी बैठी है। कहन लगे वो अंदर की बैठी हुई जिहड़ी शीतलता जां तपत है वो कई बार एनी नेड़े तपत आ जाती है, एनी दरम्यान विच तपत आ जाती है कि तेरा उस शीतलता नालों संबंध टूट जाता है। गुरु ने बाणी भी चाखिया कहन लगी

चानना भावें जिन्ना मर्जी है, सूरज का चानना, चंद्रमा का चानना, तारिया का चानना, आप इनी हर एक स्टेट विच लाइट पैदा हो रही है। जिस तरह इन्ना चानण होंदया भी मनुख नू पाचा कहन लगे एक ए बार दा चानना पैदा करना पैंदा है। सतगुरु कहंदे अंदर अंधेरा है, अंदर अंधेरा उहदे विच कादा दीवा, गुरु शब्द दा दीवा। पाचा कहंदे जदों बाहर दीवा बलदा अंधेरा खत्म हो जांदा है। दीवा बले अंधेरा जाए, दीवा बलदा ही अंधेरा खत्म हो जांदा है। तां ही सतगुरु गुरु नानक देव जी नूं भाई साहब भाई गुरदास जी ने फरमान किया, सतगुर नानक प्रगटिया मिटी धुंद जग, चानण होआ ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेर पलोआ। अंधेरा भज गया, पलोआ का अर्थ होंदा भज गया, दौड़ गया। सतगुरु अज दे शब्द राही कहिंदे सतगुर शब्द, शब्द दे दद्दे नूं सियारी, शब्द दे राही पाछा कहिण लगे जिहड़ा शब्द दे राही शब्द जपे आत्मक सूझ बूझ हो जाएगी। ज्ञान अंजन गुरदिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया नानक, मन प्रगाश, मन दे विच प्रगाश हो जाएगा, मन दे विच चानना हो जाएगा। तो लोड़ है सानू मन दे विच दीवा जगाउण दी। ऐ जिन्ने साधन ने, कथा सुननी, कीर्तन सुनना, बाणी पढ़नी, वाहिगुरु वाहिगुरु करना, सिमरन करना, ये कादे वास्ते ने भला? भी सतगुरु शब्द दे राही साडा दीवा जग जे, शब्द दे राही साडे अंदर चानना हो जे, अंदर साडे रोशनी हो जे। बाबा फरीद साहब फरमान करदे बंदे ऐनी रोशनी विच रहना है पर बाहर दिसै चानना, बाहर चानना दिस रहा है, डेकोरेशन बाहर दी लाइटिंग वेख के बड़ी खुश हो रहा है, पर दिल अंधेरी रात, दिल ते इंज है अन्नी रात है। अंदर तां तेरा मस्या दी रात तरह, सतगुरु कहंदे इन्ना अंधेरा है, पर जदों गुरु दा शब्द राही तेरे अंदर दीवा बलेगा ते फिर अंदर चानना हो जाएगा। गुरु दा शब्द एक जगदा होया दीवा है। पाचक कहन लगे दीवा अंदर बलेगा, बलिया गुरज्ञान, अंधेरा विनस्या, फिर अंदर दा अंधेरा खत्म हो जाएगा। गुरज्ञान दा दीवा बल जाएगा ना जी, शब्द दा दीवा बलेगा जदों। हर रतन पदार्थ लादा, फिर अंदर तां रतना नाल भरिया पिया। पाचक कहन लगे अंदर ते रतन ने, जिस तरह गुरबाणी